0: ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପରିଶ୍ରମକୁ ସାଥୀ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ସକାଳ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है, जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाए

0: आकाशवाणी संबलपुर जुहार आंचलिक खबर पढ़ुचन सुप्रीति मिश्र। श्रीक्षेत्र पुरी न आज महाप्रभु श्रीजगन्नाथ पवित्र स्नान यात्रा होचे। श्रीमंदिर परिसर नथिबा सुना कुआनु 108 कलस पाइन के अभिमंत्रित और सुभाषित करिकिरी महाप्रभुंकर दिव्य स्नान करा जिबा। इतार उत्र महाप्रभुंकर हाथी बेस हबा। एथिलागि आज पहपहनु मंगलार्पण पुष्पांजलि और डोर लगी नीति शेष हबार उत्रु सखालर 5 बजे श्रीजीवमानकर पहंडी मूल हिचे। धाड़ी पहंडी थी प्रभु बलभद्र और देवी सुभद्रा स्नान बेदिन विजे कर सारिथिबार बेले श्रीजगन्नाथंकर पहंडी चलीचे। स्वतंत्र नीतिकांति उत्रु महाप्रभुंकर दिव्य स्नान हबा। उपरवेला 3-3.30 बजे भितरे छेरा पहरा, 4:30 बजे हाथी बेस दर्शन आउ संजबेला 7 बजे नु साहना मेला दर्शन मूल हबा। राति 11:30 बजे नु बाहुड़ा पहंडी करा जिबा। इबाबते पुरी नु पंडित दानदी कर सूचना।
1: जय जय श्री जगन्नाथ। महाप्रभुंकर दिव्य भव्य स्नान यात्रा देव स्नान पूर्णिमी एहाकु मध्य ज्येष्ठी स्नान कहुए एहाकु मंच स्नान मध्य कहुए। महाप्रभु रत्न सिंहासन राजु ओल्लि आसन्ति पतित मानंकु दर्शन देवाई। महाप्रभुंकर जहांकर पादकोणरु गंगा आदि समस्त तीर्थ माने बाहरिछन्ति सेई महाप्रभुंकर 108 गरारे जल स्नान हेबे। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन प्रथमे मंगलार्पण हेबो। मंगलार्पण परे महाप्रभुंकर पहंडी विजय हेबो। तेणु महाप्रभुंकर से दिव्य स्नान यात्रा
0: महाप्रभु श्रीजगन्नाथ स्नान यात्रा के श्रृंखलित करबार लागि श्रीमंदिर और जिला प्रशासन तरफ जबर व्यवस्था करा जाइछि। भीड़ जगह मानके 79 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जिबार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारतपरं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मॉरिशस देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मॉरिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मॉरिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षी अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्रीराम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्रीराम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भारत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

0: समाचार प्रभात उपरे शुणे मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य संपर्क सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
3: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
4: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की

0: राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्नपत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेनदेन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव

0: के पानी ने जिले के जोनाइकोल डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 7817 0112371 7106 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: कार्यक्रम से संगीत शुणु अंजलि कथाचित्र गई एवं संगीत सजाई गोटली रथ गीत रचना बापू गोस्वामी।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ କେତେ ଗୋଟି ଓଡ଼ିଆ କଥା ଚିତ୍ରଗୀତ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ପରେ ଶୁଣିବେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षत विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों

0: के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशेल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani.
2: The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles, Patrick Hamini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth.

0: महल को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनर सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: ଏଥର ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତଙ୍କ ଗୀତ ରଚନାକୁ କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामक के ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी

उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो
1: किए
2: आपणक सह किछि मीठा मीठा कथा किछि अनुभव किछि अनुभूति रा कथा
1: आमा सह कथा हुंतु फोन माध्यम रे प्रत्येक गुरुवार दिन 11टा रु 11टा 30 मिनिट पर्यंत
2: आमो फोन नंबर हैला
3: 0667029562329568
1: मने रखंतु 0667029562329568 एवं एहार प्रसारण सुनंतु प्रत्येक रविवार दिन सकाळ 9टा रु 10टा पर्यंत
4: हेलो
0: हेलो
1: किए
2: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटना
5: प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर
6: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
5: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
6: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: 1, 2, 3, 4।
1: सुन चा नि। अरे चा नि म।
2: देल
1: कौन एमती गणी पकौ जे?
2: अरे खबर कागजर चारि पृष्ठा उल्टेले स्थानीय खबर गोटे भी नहीं।
1: ओहो अरे बाबा इत्ते काहे की आम रेडियोटा अन कलानी। मीडियम वेब्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे, एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आम आकाशवाणी भवानीपाटणा ट्यून कर। प्रत्येक दिन सकाळ 10:10 रु 11:10 जाए स्थानीय खबर आउ मनपसंदर गीत कुनी कार्यक्रम।

अपूर्व कि दिव्य होइनथिबा सही दृश्य जेउ दृश्य को देखिबा को भक्त व्याकुल होइथाय नयन तार छड़ा छड़ा हृदय तार व्याकुल श्री जगन्नाथ को दर्शन करिया पाई सही परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांडर अधिपतिंकर भाई भौणीक सहित वर्ष को थरे श्री मंदिर रु बाहरी लीला खेला करिबा अपूर्व अनन्य दिव्य आउ विरल से दृश्य काहीकि न हब कहले से परा चक्काडोला से परा जगतर नाथ श्री जगन्नाथ किए कौन चाहे तांकु सबु किछि जणा सेथि पई त सभिंक हृदय रे बास तांकर से मनर कण हृदयर ठाकुर

0: of second half stoppage time. Co-hosts Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July the 4th. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL, seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की तीन दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा एक रिपोर्ट
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं ये सम्मान देश की आतंकवाद उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं साथ ही विमानन समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे समाचार कक्ष से वैष्णवी
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की ब्यौरा हमारे संवाददाता से
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य शिक्षा समता निर्माण समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया यात्रा के दौरान यूपीआई स्वास्थ्य कृषि नौवहन अंतरिक्ष सहयोग प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल

0: सेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है

0: इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नवजौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्ट्राक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों

0: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्वकप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनिपारे विज्ञापन परे परे।
2: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
3: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 3ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथिनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि बार बार नियमों का उल्लंघन, धोखाधड़ी और उपभोक्ता हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागो की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। तमिलनाडु में करूर से AIADMK विधायक MR विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर

0: Voters under the Special Intensive Revision SIR in the National Capital Territory of Delhi will begin tomorrow. Chief Electoral Officer of Delhi Ashok Kumar announced this while briefing the media in New Delhi today. In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha performed the Pratham Puja at the Holy Cave Shrine of Sri Amarnath Ji, marking the ceremonial start of the annual pilgrimage. The annual Yatra will officially begin on July the 3rd and is scheduled to culminate on August 28th. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Estecure of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी भवानी पटना समय वर्तमान दिन 3:10 चलित अधिवेशन को शेष करने पूर्व शुणु आज तृतीय अधिवेशन आम केन्द्र प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना अपराह 5:00 आकाशवाणी दिल्ली रिले कर शुणबू महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गरिमामय उपस्थिति पदाधिकार अर्पण उत्सव सीधा प्रसारण अपराह 5:30 युववाणी शुणिपारे साहित्यायन संध्या 6:30 युवा शक्ति राति 7:25 जिला हलचल शुणी गंजम जिला संपर्क कार्यक्रम द्वय रिले कर प्रचार करू आकाशवाणी कटक केन्द्र राति 7:30 कार्यक्रम चास्पास राति 8:00 गीत गजल आंचलिक गीतर कार्यक्रम राति 8:15 शुणिपारे संबलपुरी गीत परेषण करेंगे क्षीरसिंधु नायक और साथी राति 8:30 स्पोर्ट्स स्कैन राति 9:15 स्पॉटलाइट राति 9:30 पब्लिक स्पीक यही समस्त कार्यक्रम गुड़ी रिले कर प्रचार करू आकाशवाणी दिल्ली राति 10:00 शुणे नाटक मोनुस अर्माकड रचना सिद्धांत नंद प्रयोजना सच्चिदानंद मल्लिक राति 10:30 प्रचार करू प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एथिला आज तृतीय अधिवेशन आम केन्द्र प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना आकाशवाणी भवानीपाटना एठे शेष करुछु आज द्वितीय अधिवेशन भिन्न भिन्न कार्यक्रम सह पुणि उपस्थित हबु अपराह 5:00 सेतबळ जाय विदाय नउछु।

0: मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बहादुरों को रक्षा अलंकरण प्रदान करेंगी।
1: Today we gather to honor the courage, sacrifice and dedication of our brave defense personnel. We would like to inform our listeners that this is the second phase of this year's defense investiture ceremony, in which Honorable President Srimati Draupadi Murmu would be conferring the Ati Vishisht Seva Medal, Uttam Youth Seva Medal, Param Vishisht Seva Medal and Sarvottam Youth Seva Medal.
0: इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। उनके साथ हैं श्री एचडी कुमार स्वामी, साथ में श्री किरण रिजिजू जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, साथ ही मौजूद हैं इस वक्त सीडीएस जनरल एनएस राजासुब्रमणी, सीओएस जनरल धीरज सेठ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। कुछ ही पलों में महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर पधारेंगी और उसके बाद औपचारिक रूप से ये समारोह प्रारंभ होगा। हम बता दें हमारे श्रोताओं को कि 105 बहादुरों को, सैनिकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्र की रक्षा के लिए विशिष्ट योगदान देने के लिए 56 सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवाएं देने के लिए 12 सैनिकों को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवाएं देने वाले 30 सैनिकों को परम विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध में विशेष बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले 7 सैनिकों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे।
1: Dear listeners, as we witness this distinguished awards being conferred at this Ganatantra Mandapam at the Rashtrapati Bhavan, we celebrate their unwavering service to our nation. All awardees and the proud families are seated, waiting for the arrival of the Honorable President.
0: हम ये बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति का इस वक्त इंतजार, उपराष्ट्रपति जी इस वक्त पधार चुके हैं और वे विराजमान हैं और उन्हीं के साथ ठीक उनके पास बैठे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। महामहिम राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक दोनों तरफ 3-3 सैनिक मौजूद हैं जो अपनी पूरी वेशभूषा में इस सभागार की शोभा बढ़ाते हुए, दोनों तरफ आज वे 105 लोग बैठे हैं जिन्हें ये सम्मान दिए जाएंगे और आगे की रोज में वे लोग, इनके परिवार के लोग जो इस मौके के साक्षी बनेंगे। ये ऐतिहासिक क्षण और रक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने वाले हमारे सैन्य अधिकारियों और बहादुरों का आज यहाँ पर सम्मान होगा राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में।
1: A total of 105 awards will be conferred to the awardees today. A very prestigious event that honors armed forces, security personnel for exceptional acts of bravery, conspicuous courage and devotion towards their duties.
0: सभी को प्रतीक्षा है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की और वे पधारेंगी और उनके बाद रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार उनसे स्वीकृति लेंगे कि आज का समारोह प्रारंभ किया जाए और उसके बाद और उससे पहले राष्ट्रपति के आगमन के बाद सुविधा प्रेम बहादुर गुरंग बैंड मास्टर हैं महा रेजिमेंट सेंटर सागर के, उनके नेतृत्व में वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। और ये बिगुल की आवाज आप सुन रहे हैं। राष्ट्रपति जी इस वक्त प्रवेश करती हुई गणतंत्र मंडप में पारंपरिक हैंडलूम की जो साड़ियां पहनती हैं वो उन्होंने पहनी हुई, नीले रंग का बॉर्डर और थोड़ा सा सुनहरी गुलाबी रंग उनकी साड़ी में, उनके आगे और पीछे उनके एडीसी चलते हुए धीरे धीरे सधे हुए कदमों से राष्ट्रपति जी अपने आसन तक जाती हुई, इनके ठीक पीछे बुद्ध की प्रतिमा।

0: ये राष्ट्रपति भवन चले।
1: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लिपिका दास के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी

0: वंदे मातरम और राष्ट्रगान। अब रक्षा सचिव राजेश जी अनुमति प्राप्त करते हुए आज के समारोह
1: राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने अभिवादन कर स्वीकृति दी और अब ये रक्षा अलंकरण समारोह प्रारंभ होने जा रहा है।
2: The first set of awards that
3: अति विशिष्ट सेवा मेडल और साधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए एयर मार्शल तरुण चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल, उड़ान पायलट

0: सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष ने बीएसएम द कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने सैल्यूट करते हुए सदैव कदमों से और प्राप्त करेंगे वे अति विशिष्ट सेवा मेडल। और ये तालियां इस बात का परिचायक कि सैनिक ने राष्ट्र की सेवा की है।
0: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला सेना मेडल बा।
2: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला सेना मेडल द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला अपनी सैनिक परिधान में कोर ऑफ इंजीनियर्स के आप अधिकारी हैं और अपना सम्मान प्राप्त करके राष्ट्रपति जी का सैल्यूट करते हैं।
0: हरबिंदर सिंह वांद्रा सेना मेडल।
1: कोर ऑफ सिग्नल्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वांद्रा सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए। महामहिम राष्ट्रपति जी सम्मान देते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद
0: लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल।
1: इन्फेंट्री के हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह वाईएसएम एसएम सलामी देते हुए राष्ट्रपति जी को और अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए सदैव कदमों से राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गौरव का क्षण इन सैन्य अधिकारियों के लिए और परिवार के सदस्य खड़े होकर तालियां बजाते हुए अभिवादन करते हुए
0: लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह।
2: लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी saluting the president and marching towards the dais.
1: Artillery ke adhikari hain aap Lieutenant General Ranjit Singh Regiment of Artillery ke ati vishisht seva medal aur ye salute
0: Lieutenant General Ajay Kumar vishisht seva medal.
2: Lieutenant General Ajay Kumar vishisht seva medal the infantry.
1: Infantry ke adhikari Lieutenant General अजय कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए
2: डेकोरेटेड विद अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह विर्क सेना मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह विर्क इन्फेंट्री के अधिकारी हैं और भारतीय सशस्त्र सेना भारतीय सेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दिए इसलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Lieutenant General Shamshir Singh, we are here receiving Ati Vishisht Seva Medal from the Honorable President.
0: Lieutenant General Aditya Vikram Singh Rathi, Sena Medal, Vishisht Seva Medal.
1: The Brigade of the Guards ke Lieutenant General Aditya Vikram Singh Rathi, Sena Medal aur Vishisht Seva Medal prapt kar chuke hain, jaate hue Rashtrapati ji ke samne aur अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए
2: लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी सेवा मेडल रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं आज इन्हें मिलने जा रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल। द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं आप राष्ट्रपति जी के सामने जाकर उन्हें सैल्यूट करते हुए और अपना मेडल प्राप्त करते हुए।
0: लेफ्टिनेंट जनरल चियारथ गोपालन मुरलीधरन।
2: Lieutenant General Chiarath Gopalan Muralidharan, the Army Medical Corps.
1: Army Medical Corps के अधिकारी हैं Lieutenant General Chiarath Gopalan Muralidharan. भारतीय सेना की ओलिव ग्रीन वर्दी धारण किए हुए राष्ट्रपति जी से अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।

0: परिवार के सदस्य उनकी पत्नी और उनकी पुत्री
1: लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल
2: लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा recipient of Sena Medal and Vishesh Sena Medal, the Brigade of the Guards, to receive his Ati Vishesh Sena Medal.
0: Brigade of Guards ke Lieutenant General Puneet Ahuja, VSM, praapt kar chuke hain. Aaj bari hai Ati Vishesh Seva Medal ki. Rashtrapati ji ne unke seene par ye medal unki shaan badhane ke liye lagaya. Putri aur patni.
1: Vice Admiral Anand Y. Sardesai, Vishesh Seva Medal.
2: Vice Admiral Anand Y. Sardesai Vishesh Seva Medal will receive his Ati Vishesh Seva Medal.
0: नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई वीएसएम प्राप्त कर चुके हैं. आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की. भारतीय नौसेना की सफेद वर्दी और इस वक्त प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: वाइस एडमिरल रजत कपूर.
0: वाइस एडमिरल रजत कपूर जाते हुए राष्ट्रपति जी के मंच की तरफ पहले सैल्यूट किया है. नेवी का जो अलग सैल्यूट होता है उसके बाद जाते हुए मंच की तरफ और अब प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: वाइस एडमिरल रजत कपूर रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल.
3: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली.
0: और अब बारी भारतीय नौसेना के एक और अधिकारी वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली की. आप अधिकारी हैं भारतीय नौसेना के. भारतीय नौसेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दी है इसीलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है आज अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट.
3: वाइस एडमिरल सुशील मेनन विशिष्ट सेवा मेडल.
0: और अगली बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की वाइस एडमिरल सुशील मेनन की. विशिष्ट सेवा मेडल इनके सीने पर टंगा हुआ है जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने और पहुंचकर अपना पदक प्राप्त करते हुए.
3: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी.
0: नौसेना के ही सम्मानों की बारी अब आगे आते हुए वाइस एडमिरल अनिल जग्गी पहले मंच के सामने जाकर राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं. उसके बाद में पदक प्राप्त करने के बाद भी सैल्यूट करते हैं फिर अपने स्थान तक जाते हैं.
2: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल.
3: सर्जन रियर एडमिरल वर्तमान में सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे विशिष्ट सेवा मेडल.
0: रबारी सर्जन रियर एडमिरल अब सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे की जिन्हें वीएसएम मिल चुका है और आज प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: सर्जन रियर एडमिरल नाउ सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल.
3: एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल वायुसेना मेडल उड़ान पायलट.
0: और अब भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बारी. एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: मेहताब सिंह देसवाल flying pilot receiving the Ati Vishisht Seva Medal.
3: Air Marshal Kondan Kolangara Abu Ahmed Sanjeev Vishisht Seva Medal.
0: Air Marshal Kondan Kolangara Abu Ahmed Sanjeev VSM Aeronautical Engineering Mechanical ke sadasya hain. Prapt karte hue

0: अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर वाइस मार्शल, वर्तमान में एयर मार्शल सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर वाइस मार्शल, नाउ एयर मार्शल सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव, विशिष्ट सेवा मेडल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
0: एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के एयर वाइस मार्शल, अब एयर मार्शल हैं आप सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारी राष्ट्रपति जी को।
1: अपर महानिदेशक डॉनी माइकल, प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल, तटरक्षक मेडल।
2: एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉनी माइकल, पीटीएम टीएम।
0: भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक डॉनी माइकल अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल। मुस्कुराकर फोटो खिंचाते हुए उनकी धर्मपत्नी तालियां बजाते हुए सैल्यूट करके वापस अपने स्थान तक जाते हुए।
1: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
2: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय, सेवा मेडल, बीएसएम, रिटायर्ड।
0: नारी शक्ति का प्रतीक सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुकी हैं, अब सेवानिवृत्त है, लेकिन आज सम्मान करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी अति विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें प्रदान करती हुई, और ये इतनी सारी तालियां इस बात का प्रतीक हैं।
1: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, सेना मेडल बार, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, सेना मेडल, बीएसएम, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल पहले से लगा हुआ है और आज प्राप्त हुआ है इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पहल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अब बारी है इन्फेंट्री के ही एक और अधिकारी मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल की, विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें प्राप्त हो चुका था, आज इन्हें मिल रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल, वीएसएम, द इन्फेंट्री, रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Next recipient of that Vishesh Seva Medal, Major General Sujit, I beg your pardon, Major General Gurpreet Singh Chaudhary, SMVSM, the Army Air Defence.
0: Army Air Defence ke adhikari Major General Gurpreet Singh Chaudhary, Vishisht Seva Medal. Aaj Rashtrapati Shrimati Draupadi Murmu inhe pradan kar rahi hain Ati Vishisht Seva Medal. Salute karte hue Rashtrapati ji ko.
1: Major General Ashish Shah, Sena Medal.
2: Major General Ashish Shah, Sena Medal, the Armored Corps, marching towards the Honorable President to receive his Ati Vishisht Seva Medal.
0: Armored Corps ke adhikari Major General Ashish Shah, Mahamahim Rashtrapati ji ke samne jaate hue aur prapt karte hue Ati Vishisht Seva Medal.
1: Major General Amar Ram Dasani, Yuddha Seva Medal.
2: Major General Amar Ram Dasani, Youth Seva Medal, the Infantry.
0: Infantry के अधिकारी हैं Major General Amar Ram Dasani. राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सामने मौजूद हैं और प्राप्त कर रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: Major General Vikas Chaudhary, Youth Seva Medal.
2: Major General Vikas Chaudhary, Youth Seva Medal, the Infantry, to receive his Ati Vishisht Seva Medal.
0: Salute karte hue aur jaate hue Rashtrapati ji ke samne Major General Vikas Chaudhary, Youth Seva Medal prapt kar chuke hain, Infantry ke adhikari hain. Aur ek joshili muskaan unke chehre par salami dete hue
3: Major General Tarun Agrawal.

0: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के मेजर जनरल तरुण अग्रवाल। आर्टिलरी का अधिकारी राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
1: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
2: मेजर जनरल वुदे परिदा, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: Major General Vudev Parida, Vishesh Seva Medal, the Regiment of Artillery, saluting the President and receiving the Ati Vishesh Seva Medal.
0: The Regiment of Artillery ka adhikari Major General Vudev Parida, Vishesh Seva Medal, inhe pradan kiya ja chuka hai, Ati Vishesh Seva Medal.
2: Major General Sumit Mehta, Vishesh Seva Medal.
1: Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, the Armored Corps.
0: Armored Corps ke adhikari Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal. Ab Rashtrapati ji ne pradan karengi Ati Vishisht Seva Medal.
2: Major General Vikrant Suresh Deshpande.
0: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं आप, मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के ठीक सामने अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
1: मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे, इन्फेंट्री।
2: मेजर जनरल कुलेश्वर सिंह डडबाल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: Major General Kuleshwar Singh Datwal, earlier recipient of Sena Medal and Vishesh Sena Medal, will receive the Ati Vishesh Seva Medal.
0: Infantry ka adhikari Major General Kuleshwar Singh Datwal, Vishesh Seva Medal se alankrit ho chuke hain aur aaj alankrit honge Ati Vishesh Seva Medal se. Ye ek aur khushi ki baat ki unki putri
2: Major General Vivek Narang.
1: Major General Vivek Narang from the infantry, saluting the President.
0: Infantry ke adhikari hain Major General Vivek Narang. Rashtrapati ji ke theek samne apna padak grahan karte hue Ati Vishisht Seva Medal. Garvili muskan, unki putri aur patni taaliyan bajakar.
2: Major General Parashit Singh Punia, Sena Medal, Vishisht Seva Medal.
1: Major General Paranveer Singh Punia, Seva Medal, Vishesh Seva Medal, will receive the Ati Vishesh Seva Medal.
0: Infantry ke ek aur adhikari Paranveer Singh Punia, Vishesh Seva Medal, Ati Vishesh Seva Medal, prapt karenge Rashtrapati ji se.

0: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: इन्फेंट्री के ही अधिकारियों की बारी चलती हुई, बहुत सेवा की इन्होंने राष्ट्र की, सशस्त्र सेनाओं की, और अब बारी है मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर की।
2: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर YSM SM रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेना मेडल, सेना मेडल, सल्यूटिंग द प्रेसिडेंट एंड रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
1: युद्ध सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं इन्फेंट्री के मेजर जनरल अरिंदम साहा, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। टुडे इट्स हिज टर्न टू रिसीव दैट विशिष्ट सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी SM BSM मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें मिलता हुआ।

0: Major General Abinder Pal Singh Bal, Sena Medal.
1: Major General Abinder Pal Singh Bal, Seva Medal.
2: Infantry ke ek aur adhikari Major General Abinder Pal Singh Bal, Ati Vishisht Seva Medal, aaj unhe prapt hota hua Rashtrapati ji ke haathon, jo ki sashastr सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं।
0: मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल द इन्फेंट्री।
2: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल मनदीप सिंह सेना मेडल।
1: मेजर जनरल मनदीप सिंह सेना मेडल इज एन एक्स रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: इन्फेंट्री के अधिकारियों की सीरीज चलती हुई मेजर जनरल मनदीप सिंह की बारी है प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: Rear Admiral Nirbhay Bapna, Vishisht Seva Medal.
1: The next recipient of Ati Vishisht Seva Medal and Rear Admiral Nirbhay Bapna, Vishisht Seva Medal.
2: Abari aari hai nau sena ke adhikariyon ki Rear Admiral Nirbhay Bapna, Vishisht Seva Medal. Aaj sammanit ho rahe hain Ati Vishisht Seva Medal se Rashtrapati ji ke haathon se.
0: Air Vice Marshal Kaushik Chatterjee.
1: Air Vice Marshal Kaushik Chatterjee, Medical, to receive the Ati Vishisht Seva Medal.
2: भारतीय वायु सेना की चिकित्सा विंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी राष्ट्रपति जी इन्हें प्रदान कर रही हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
1: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल इज एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ वीएम फ्लाइंग पायलट।
2: आभारी भारतीय वायुसेना के इस पायलट की एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ अति विशिष्ट सेवा मेडल आज गणतंत्र मंडप में उन्हें प्राप्त होता हुआ।

0: एयर वाइस मार्शल वडपल्ली रवि सत्यनारायण राजू विशिष्ट सेवा मेडल.
1: एयर वाइस मार्शल वडपल्ली रवि सत्यनारायण राजू विशिष्ट सेवा मेडल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टू रिसीव दैट विशिष्ट सेवा मेडल.
2: और अब वायुसेना के एक और अधिकारी एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार एयर वाइस मार्शल वडपल्ली रवि सत्यनारायण राजू विशिष्ट सेवा मॉडल. आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल विंग के अधिकारी हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा.
0: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान वायुसेना मेडल उड़ान पायलट.
1: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान VM फ्लाइंग पायलट
2: अब भारतीय
1: रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह.
1: एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह एडमिनिस्ट्रेशन फाइटर कंट्रोलर.
2: भारतीय वायुसेना के फाइटर कंट्रोलर हैं एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह. आपको प्राप्त होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल आपकी सेवाओं के लिए.
0: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा.

0: वायुसेना मेडल उड़ान पायलट
1: एयर वाइस मार्शल मनु मेधा बीएम फ्लाइंग पायलट इज द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल
2: और अब बारी अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की एयर वाइस मार्शल मनु मेधा की आप एक पायलट हैं
0: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त
2: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे विशिष्ट सेवा मेडल मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में थे अब रिटायर हो चुके हैं लेकिन आज एक और उपलब्धि इनके कैरियर में जुड़ती हुई इन्हें मिलता हुआ अति विशिष्ट सेवा मेडल
1: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे VSM रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल
0: मेजर जनरल संदीप कुमार विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त
1: मेजर जनरल संदीप कुमार विशिष्ट सेवा मेडल द जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट रिटायर्ड इज रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल
2: मेजर जनरल संदीप कुमार विशिष्ट सेवा मेडल द जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट रिटायर हो चुके हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी के कर कमलों से और सैल्यूट
0: मेजर जनरल पराग अनंत देशमुख सेवानिवृत्त
1: मेजर जनरल पराग अनंत देशमुख द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स रिटायर्ड इज द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अति विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग
2: आर्मी मेडिकल कोर के मेजर जनरल पराग अनंत देशमुख अब रिटायर हो चुके हैं प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल
0: एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार माथुर उड़ान पायलट सेवानिवृत्त
1: एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार माथुर फ्लाइंग पायलट रिटायर्ड
2: और अब राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार माथुर आप वायुसेना में उड़ान पायलट थे रिटायर हो चुके हैं प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के कर कमलों से
0: एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त
1: Air Vice Marshal Nand Kumar Nair, VSM Aeronautical Engineering Electronics, retired, receiving the Ati Vishisht Seva Medal.
2: Bharati Vayu Sena ke Aeronautical Engineering Wing mein rahe aur khas taur par electronics ka kaam sambhalne wale Air Vice Marshal Nand Kumar Nair ab retire ho chuke hain prapt karte hue Ati Vishisht Seva Medal aur salute karte hue
0: Brigadier Pavan Dhul Vishisht Seva Medal
1: Brigadier Pavan Dhul, VSM, the Army Medical Corps.
2: Army Medical Corps के अधिकारी Brigadier Pavan Dhul विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत हो चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से अब बारी सैल्यूट की
0: सुबेदार एच होकाटो सेमा 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स शॉटपट कांस्य पदक विजेता वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित
1: सुबेदार एच होकाको सेमा 9 असम रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड्स
2: सुबेदार होकाको सेमा कौन नहीं जानता इन्हें भारतीय सेना के हैं लेकिन अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है शॉटपट के खिलाड़ी रहे हैं 9 असम के राष्ट्रपति जी के सामने अपना पदक प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल
3: अब उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे युद्ध संघर्ष युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल
2: हमारे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है आर्मर्ड कोर हेडक्वार्टर साउथ सदर्न कमांड का नेतृत्व करते हैं उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से

0: Lieutenant General Dheeraj Seth, PVSM AVSM, receiving the Uttam Youth Seva Medal from the President.
1: Air Marshal Manish Khanna, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, Udan Pilot.
2: और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने एयर मार्शल मनीष खन्ना अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट है, आज प्राप्त करते हुए युद्ध के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल मनीष खन्ना एवीएसएम वीएम फ्लाइंग रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव एवीएसएम एसएम द पैराशूट रेजिमेंट टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
2: अगला युद्ध उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव को मिलता हुआ। अति विशिष्ट सेवा मेडल पैराशूट रेजिमेंट हेडक्वार्टर के आप अधिकारी हैं।
1: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: गढ़वाल राइफल्स हेडक्वार्टर 9 कोर के अधिकारी अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत।
0: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत एवीएसएम वीएसएम रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर एवीएसएम वाईएसएम फ्रॉम द असम रेजिमेंट रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: द असम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेंढारकर अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल इन्हें मिल चुका है और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ एवीएसएम एंड वाईएसएम फ्रॉम गढ़वाल राइफल्स रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सशस्त्र बलों के लिए विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति जी के
1: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ एवीएसएम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल तरुण सोपती अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द उत्तम युद्ध सेवा मेडल इज वाइस एडमिरल तरुण सोपती एवीएसएम वीएसएम।
2: नौसेना अधिकारी वाइस एडमिरल तरुण सोपती अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल अब मिलता हुआ उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, उड़ान पायलट।
0: एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु मेडल, फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: लड़ाकू विमान उड़ाते हैं आप, एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
0: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी वायु मेडल, फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिस इवनिंग।
2: और अब बारी है एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी की, आप फ्लाइंग पायलट हैं और युद्ध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर कमोडोर प्रभात मलिक वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।

0: Air Commodore Prabhat Malik, Vayu Sena Medal, Flying Pilot, receiving the Uttam Yudh Seva Medal.
1: वायुसेना के ही एक और अधिकारी अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, एयर कॉमोडोर प्रभात मलिक।
2: ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर, उड़ान पायलट।
0: ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर, फ्लाइंग पायलट, टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: और अब बारी वायुसेना के एक और अधिकारी की कि वे जाएं और राष्ट्रपति जी से उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करें। यह हैं ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर।
3: अब परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सर्वप्रथम वाइस एडमिरल वर्तमान एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: वाइस एडमिरल नाउ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
1: और अब बारी परम विशिष्ट सेवा मेडल की। सबसे पहले एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि नौसेना के अध्यक्ष हैं, एवीएसएम है, वीएसएम है, प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह एवीएसएम वाईएसएम वीएसएम फ्रॉम द इन्फेंट्री रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: परम विशिष्ट सेवा मेडलों की श्रृंखला में अब बारी है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इन्फेंट्री के अधिकारी हैं।
3: वाइस एडमिरल संजय बात्सायन अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल।
0: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग इज वाइस एडमिरल संजय बात्सायन एवीएसएम एनएम।
1: भारतीय नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल संजय बात्सायन अति विशिष्ट सेवा मेडल, नेवी मेडल प्राप्त कर चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करके राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं।
3: वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल।
0: वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: और अब जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के सामने अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
3: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एवीएसएम वीएम वीएसएम फ्लाइंग पायलट इज द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: अब राष्ट्रपति जी से परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने जा रहे हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अब भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
3: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल।
0: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: परम विशिष्ट सेवा मेडल की श्रृंखला में अब माननीय राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, आप पायलट हैं, भारतीय वायुसेना के अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
3: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय वायुसेना के एक और अधिकारी एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
3: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेवा मेडल।

0: from the infantry receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल.
2: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल.
0: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल.
1: द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं. परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए
2: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल.
0: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल.
1: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल इसी श्रृंखला में आज जुड़ने जा रहा है परम विशिष्ट सेवा मेडल.
2: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल.
0: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली UYSM, AVSM, SM, VSM from the infantry to receive the Param Vishisht Seva Medal.
1: Infantry ke ek aur adhikari Lieutenant General Rashim Bali Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Seva Medal, Vishisht Seva Medal.
2: Lieutenant General Manish Mohan Eri Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal.
0: Lieutenant General Manish Mohan Eri YSM, AVSM, SM from the infantry receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल.
2: लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल.
0: लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही UYSM, AVSM, YSM, SM from the infantry receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: Infantry के एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही प्राप्त करते हुए अपना सम्मान परम विशिष्ट सेवा मेडल.
2: लेफ्टिनेंट जनरल धीरेंद्र सिंह कुशवाहा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल.
0: The next recipient of the Param Vishisht Seva Medal this evening is Lieutenant General Dhirendra Singh Kushwaha, AVSM, SM from the infantry.
1: Infantry ke ek aur adhikari Lieutenant General Dhirendra Singh Kushwaha Ati Vishisht Seva Medal, Seva Medal prapt kar chuke hain, prapt karte hue Param Vishisht Seva Medal.
2: Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha, Sena Medal.
0: Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha, Sena Medal from the Army Air Defense receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: Army Air Defense ke adhikari Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha aprapt karte hue Param Vishisht Seva Medal.
2: Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal.
0: Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal to receive the Param Vishisht Seva Medal.
1: Armored Corps ke adhikari hain aap, Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal prapt kar chuke hain aur aaj prapt kar rahe hain Param Vishisht Seva Medal Rashtrapati ji ke kar kamlon se.
2: Surgeon Vice Admiral Aarti Sareen, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal.
0: Surgeon Vice Admiral Aarti Sareen, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: Abari Nari Shakti ki Vice Admiral.

0: एडमिरल आरती सरीन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुकी हैं और आज गौरव से प्राप्त कर रही हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल अतुल आनंद अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल अतुल आनंद अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल टू रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं वाइस एडमिरल अतुल आनंद, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट

0: Sattva Medal, Vishesh Seva Medal to receive the Param Vishesh Seva Medal.
1: भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं वाइस एडमिरल अतुल आनंद, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और इस वक्त प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
0: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर रहे मैकेनिकल विंग में, एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल सूरज सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, उड़ान पायलट, सेवानिवृत्त।
0: The next recipient of Param Vishesh Seva Medal this evening is Air Marshal Surat Singh, AVSM, BM, BSM, retired.
1: भारतीय वायुसेना के पायलट रहे हैं एयर मार्शल सूरत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
3: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
0: Lieutenant General Arvind Walia, Ati Vishisht Seva Medal, retired, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: और अब पारी है परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया की। आप कोर ऑफ इंजीनियर्स में थे और रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अपना पदक राष्ट्रपति जी के हाथों से।
3: लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
0: Lieutenant General Rakesh Kapoor, Ati Vishesh Seva Medal, Vishesh Seva Medal, retired, receiving the Param Vishesh Seva Medal this evening.
1: Armored Corps के अधिकारी रहे हैं Lieutenant General Rakesh Kapoor, Ati Vishesh Seva Medal, और विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद, रिटायर होने के बाद आज प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: Lieutenant General Gajendra Joshi, Ati Vishesh Seva Medal, Sena Medal, सेवानिवृत्त।
0: Lieutenant General Gajendra Joshi, Ati Vishesh Seva Medal, Sena Medal from the Infantry, retired.
1: Infantry के एक और अधिकारी, भारतीय सेना को आपने अपनी सेवाएं दी हैं, Lieutenant General Gajendr Joshi, Ati Vishesh Seva Medal और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
0: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना, अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, रिटायर्ड।
1: और अब बारी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की। सेवाएं दे चुके लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना की अति विशिष्ट सेवा मेडल, आप रिटायर हो चुके हैं और प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
0: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार, रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड, विल रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: कोर ऑफ सिग्नल्स में आपने काम किया था, लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और आज प्राप्त कर रहे हैं रिटायर होने के बाद परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, सेवानिवृत्त।
0: Air Marshal Sunit Kashinath Vidhate, Ati Vishesh Seva Medal, Yudh Sena Medal and Vayu Medal, retired, receiving the Param Vishesh Seva Medal.
1: भारतीय वायु सेना में रहकर आपने बहुत उड़ाने भरी है, Air Marshal Sunil Kashinath Vidhate, Ati Vishesh Seva Medal, Yudh Sena Medal प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
3: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
1: भारतीय सेना के अगले अधिकारी परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल गुरप्रीत

0: सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: Major General Pankaj Malhotra, the Vishisht Seva Medal, Sena Medal from the Brigade of the Guards, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
0: अगला परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के आप अधिकारी रहे हैं।
1: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Major General Charanjit Singh Mann, earlier recipient of Ati Vishisht Seva Medal and Vishisht Seva Medal, is now receiving the Param Vishisht Seva Medal.
0: Armored Corps ke adhikari Major General Charanjit Singh Mann Param Vishisht Seva Medal prapt kar rahe hain Rashtrapati ji ke kar kamlon se. Medal prapt karne ke baad unhe salute karte hue.
1: Major General Rupesh Mehta, Sena Medal, Vishisht Seva Medal.
2: Major General Rupesh Mehta, Sena Medal and Vishisht Sena Medal from the Regiment of Artillery, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
0: Artillery Regiment ke adhikari Major General Rupesh Mehta ki bari hai apna Param Vishisht Seva Medal grahan karne ki. Aap Vishisht Seva Medal se pehle hi alankrit ho chuke hain.
3: Ab Sarvottam Yuddh Seva Medal pradan kiye jayenge. युद्ध अथवा संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा PVSM AVSM CM फ्रॉम द मद्रास रेजिमेंट हेडक्वार्टर्स नॉर्दर्न कमांड।
0: सात बहादुरों को मिलेगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सबसे पहले बारी है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। मद्रास रेजिमेंट के आप अधिकारी हैं, प्राप्त करते हुए युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा
3: मेडल। एयर मार्शल नगेश कपूर परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल।
2: Air Marshal Nagesh Kapoor, PVSM, AVSM, VM, Flying Pilot, receiving the Sarvottam Yuddh Seva Medal.
0: Sarvottam Yuddh Seva Medal prapt karne ki bari ab hai Bharatiya Vayu Sena ke adhikari Air Marshal Nagesh Kapoor ki Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal. Aap Flying Pilot hain Bharatiya Vayu Sena ki.
3: Lieutenant General Rajiv Ghai, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, बार टू सेना मेडल एंड बार।
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, UISM, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी।
0: कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी विशिष्ट सेवाएं दी आपने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
3: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल।
2: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेना मेडल, वायु सेना मेडल, फ्रॉम फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना के एक और उत्कृष्ट अधिकारी पायलट एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और अपने
3: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, सेवा निवृत्त।
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह PVSM AVSM NM रिटायर्ड।
0: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह अब प्राप्त कर रहे हैं अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। आपने भारतीय नौसेना में युद्ध के दौरान
3: एयर मार्शल दी थी नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, सेवानिवृत्त।
2: एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, फ्लाइंग पायलट रिटायर्ड रिसीविंग द

0: गौतम युद्ध सेवा मेडल।
1: भारतीय वायुसेना के एक उत्कृष्ट अधिकारी और पायलट एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
0: The next recipient of Sarvottam Yudh Seva Medal is Air Marshal Jitendra Mishra, AVSM, VSM, Flying Pilot, retired.
1: भारतीय वायुसेना के एक और पायलट रहे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को। और इसी के साथ आज के जो रक्षा अलंकरण थे उनका समापन होता हुआ रक्षा सचिव राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए।
3: माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए।
1: माननीय राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी।

0: रक्षा अलंकरण समारोह का दूसरा चरण यह था, जिसमें विशिष्ट सेवा पुरस्कार आज सशस्त्र सेनाओं के विशिष्ट अधिकारियों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति जी अब गणतंत्र मंडप से सबका अभिवादन करते हुए धीरे धीरे बाहर जाती हैं। उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और उनके ठीक पीछे अन्य अधिकारी। और ये बता दें कि आज 105 अधिकारियों को ये विशिष्ट अलंकरण यहाँ पर प्रदान किए गए, जिसका आंखों देखा हाल आप आकाशवाणी के जरिए सुन रहे थे।
1: As this solemn ceremony draws to a close, let us offer our deepest respect to all the awardees and their families. May we always remember that the spirit of duty that drives our armed forces. I, Lipika Das, along with my co-commentator, Mahindra Singh Lales, OB in charge, Prabha Kumar, with our technical team, Ashok Kumar Mishra, Sumit Katiyar, Hemraj Meena, and producer, Pramod Kumar, take you back to the studios of Akashvani.
2: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे महेंद्र लालस और लिपिका दास। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: श्रीमती द्रौपदी मुर्मूंक गरिमामय उपस्थितिरे प्रसारण दिल्लीरु भवानी पटना।
4: अच्छा दास बाबू, आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट, हले ए पजंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
5: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पय मु सतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
6: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहि बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूलद्वा। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: अच्छा दास बाबू, आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट, हले ए पजंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
5: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पय मु सतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
6: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहि बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूलद्वा। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: आकाशवाणी भवानी पटना केंद्ररु प्रथम चलित अधिवेशन लालचल क्रम कटक केन्द्र चाषपास प्रचार कर शिल्पी सुचंदन दास प्रचार करिबो कतिटि संबलपुर अंचल गीत नायक साथी 9:15 स्पॉटलाइट पब्लिक स्पीक आकाशवाणी दिल्ली रु मनु शर्मा कड़ प्रयोजना सचिदानंद मल्लिक कार्यक्रम उमंग सूचना आसंता कार्यक्रम कार्यक्रम बंदना निशिप्रभा पाणी गीता पटनायक कृष्ण चंद्र राय 9:30 निवेदन करेंगे सचिदानंद मल्लिक श्रीमद भागवत प्रचार कर 9:35 ओडिया आलोच

0: रोजगार पंथा देखाई पारिबे विशेष करी निजुक्ति दाता हेबार मानसिकता रखिबे ए दिगरे कार्य करछंती सरकार एमिति अनेक योजना मध्यरु स्टार्टअप इंडिया योजना अन्यतम एक अभिनव चिंताधारा किंबा बजार सुविधा को देखी नुआ व्यावसायिक प्रकल्प आरंभ करिबा को एही योजना प्रोत्साहित करे भारत वर्तमान विश्वर तृतीय बृहत्तम स्टार्टअप इकोसिस्टम भाबे ख्याति अर्जन करिछि एही योजना माध्यमरे टैक्स रिहाती एवं आर्थिक सहायता जोगाई दियंती सरकार जहाँ द्वारा जुब वर्गंग पाई आत्मनिजुक्तिर बाट खुली जाए एही अवसररे आज रहिछि आलोचना स्टार्टअप माध्यमरे जुब वर्गंग पाई आत्मनिजुक्तिर सुजोग ए संपर्करे आलोचना करुछंती डॉक्टर लक्ष्मण साहू।
1: आजिर समाजरे अनेक सर्वनिम्न शिक्षा बा उच्चतम शिक्षा पाइबा परे चाकरी न पाई बेकार हुई मानसिक स्थिति को हराई बसुछंती तेनु बेकार युवक और युवती को केवल चाकरी उपर निर्भर न रही निजस्व व्यवसाय उद्योग कृषि पशुपालन और सेवा क्षेत्र में स्वावलंबी करने केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न योजना और ऋण सुविधा आरंभ करोजना गुड़िक मूल उद्देश्य हूँ रोजगार सृष्टि उद्योगी सृष्टि और ग्राम और सहर उभय अंचल आर्थिक सशक्तिकरण कर लक्ष्य रखी स्टार्टअप मध्यम युववर्ग आत्मनिजुक्ति सुजोग रही स्टार्टअप एपरी एक नूतन व्यवसाय जहां अभिनव चिंताधारा प्रजुक्ति किंवा नुआ सेवा माध्यम रे बजार समस्या रा समाधान करे भारत रे स्टार्टअप इंडिया परी पदक्षेप युवक और युवती मानू चाकरी खोजी व्यक्ति चाकरी सृष्टिकारी उद्योग परिणत होवार सुजोग देसी आज युवपीढ़ी केवल सरकारी किंबा बेसरकार चाकरी उपर निर्भर न रही निजर दक्षता शिक्षा और सृजनशीलता को व्यवहार कर निजस्व व्यवसाय गढ़ी पार्टी स्टार्टअप मध्यम युववर्ग आत्मनिजुक्ति सुजोग और सरकार सुविधा रही स्टार्टअप केवल एक व्यवसाय नुहे बर नूतन चिंताधारा उद्भावन और समस्या व्यवहारिक समाधान को व्यवसाय परिणत कर एक प्रयास मात्र भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया माध्यम रे युववर्ग को उद्योगी होगा प्रोत्साहित कर लक्ष्य हूँ युवक मान को जब शिकर नुहे जब क्रिएटर भावे गढ़ी तोलिबा स्टार्टअप कौन ए विषय समस्त युवक युवती माने जाणी रखिबा आवश्यक जथेष्ट रहिछि स्टार्टअप हेउछि एपरी एक नूतन व्यवसाय जहां केवल समस्या नूतन समाधान प्रदान करे किंबा एक नूतन उत्पाद अथवा सेवा बजार को आने यहा प्रजुक्ति भित्तिक होई पारे पुणी कृषि स्वास्थ्य शिक्षा पर्यटन खाद्य प्रक्रियाकरण हस्तशिल्प किंबा सेवा क्षेत्र में मध्य होई पारे युववर्ग स्टार्टअप अति गुरुत्वपूर्ण कहिले अत्युक्ति हेब ना निजे रोजगार पाइबार सुजोग अन्य मानक चाकरी सृष्टि यहा करिथाए जेउथिरे निज दक्षता और ज्ञान सठिक व्यवहार करा जाए साधारणत ग्रामीण अर्थनीति को सुदृढ़ करिबा स्थानीय संपदर सदव्यवहार करिबा व्यक्तिगत लाभ नुहे यहा सार्वजनीन लाभ रे परिणत होइथाए आत्मनिर्भर भारत गठन रे अवदान पलटि जाए युवगोष्ठी लागि केउं क्षेत्र रे स्टार्टअप कौन करा जाय पाइबो ताही आजिर विचार्य विशेष करी जैविक चाष और कृषि प्रजुक्ति दुग्ध माछ और कंकड़ा पालन कुकुड़ा पालन खाद्य प्रक्रियाकरण आदि रे युवगोष्ठी मनोनिवेश करिवार आवश्यकता रही वर्तमान डिजिटल इंडिया करिबा दिगरे प्रधानमंत्री अधिक गुरुत्व देउछंती सेही दृष्टिरु ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग मोबाइल आप और सॉफ्टवेयर ऑनलाइन शिक्षा हस्तपंत और हस्तशिल्प पर्यटन और होम स्टे बज्य वस्तु परिचालना सौरशक्ति सबुज प्रजुक्ति उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाइछि एथिपाई सरकारक पक्षरु ऋणर मध्य सुविधा रहिछि एक नूतन व्यवसाय आरंभ करिवारे

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ।
1: आज तो पार्टी दरकार प्रथम चैंपियन सहित सेल्फी उठेबा आईडिया एची पार्टी करिबा चलो पिज्जा पार्टी ये चल तो कार्ड ओपन दे
2: मो कार्ड रो डिटेल्स मु निजे ही भरिबी आरबीआई कहे जे निजरा पिन ओटीपी सीवीवी किंबा इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड कहा सहित शेयर करंतु नहीं ऑनलाइन बैंकिंग केवल निजरा कंप्यूटर मोबाइल एवं सिक्योर नेटवर्क द्वारा करंतु।
3: बाय गर्ल्स कुआडे जाउछु सुनि परलुनी नो शेयरिंग
2: आरबीआई कहे सचेत होवंतु सतर्क रहंतु।
4: अधिक सूचना पाई 1444 शून्य को मिस्ड कॉल दियंतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित रे जारी।

देवी सुभद्रा आसिबा सह शेषरे कोटी ओडियांको मोडमणि श्रीजगन्नाथ चक्कारे विजे करिथिले। सुनाकुअर 108 गरा सुबासित जलरे श्रीजीवमानंकु स्नान कराजाइछि। गजपति महाराजा श्री दिव्यसिंह देवंक द्वारा राजनीति ओ छेरापहरा सेवा संपादित होइछि। श्रीजीवमानंक गजानन बेश शेष होइछि। स्नानवेदी उपरे चतुर्धा मूर्ति दुर्लभ हाथी बेशरे श्रद्धालुमानंकु दर्शन देउछन्ति। सेवायतंक द्वारा आजि गोटिए भोगनीति अनुष्ठित हेबो। भोगनीति परे श्रद्धालुमाने साहण मेला दर्शन करिवे। महाप्रभुंक पहंडी जल लागि हाथीबेश आदि नीतिकु श्रृंखलित करिबा लागि प्रशासन पक्षरु समस्त बंदोबस्त करा जायछि। सुरक्षाकु दृष्टि रखि 78 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जायछि। पुरी बडदाण्ड संपूर्ण शहरकु सीसीटीवी सर्वेक्षण मध्यरे रखा जायछि। देवस्नान पूर्णिमा अवसरें साबर श्रीक्षेत्र कोरापुटे भक्तिमय परिवेश मध्यरे श्रीजगन्नाथ श्रीबलभद्र और देवी सुभद्रांक स्नान नीति अनुष्ठित होइजैछि। प्रभुंक हाथीवेश देखिबापई श्रद्धालुंक भिड़ होइथिला। सेहिबळी नयगढ़ जिलार रणपुटठारे ठाकुरंक हाथीवेश दर्शन पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जायथिला। गजपति जिला पारलाखेमुंडी मंदिर परिसररे स्नान मंडपरे पारंपरिक रीतिनीति अनुयायी प्रभुंक देवस्नान पूर्णिमा अनुष्ठित होइजैछि। अपराह्नरे ठाकुरंक गजानन बेशरे सज्जित करा जायथिला। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पुरी गस्त कर स्नान मंडप में महाप्रभुंक दर्शन करते। मुख्यमंत्री बड़दाण्डस्थित रथकड़े पहुंच रथजात्रा चली रथ निर्माण कार्यर अग्रगति समीक्षा करते। रथ महाराणा आलोचना कर मतामत आवश्यकता विषय जाणी सहित रथ निर्माण कार्यक अधिक सुरखुर और समयानुसार संपन्न करने मुख्यमंत्री गुरुत्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नूआदिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवन में 2026 मसीह द्वितीय प्रतिरक्षा अलंकरण समारोह में साहसिकता पुरस्कार प्रदान करते। राष्ट्रपति प्रतिरक्षा बाहिनी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य केन्द्रशासित अंचल पुलिस कर्मचारी साहसिकता पुरस्कार सम्मानित करते। पुरस्कार जम्मू काश्मीर उत्तर पूर्वांचल और देशर सीमांत अंचल आतंकवाद विद्रोह शत्रुपक्ष विरोध में भारत निरंतर संग्राम को प्रतिफलित करने सहित विमान चलाचल समुद्र अभियान एवं मानविक सहायता कार्य प्रदर्शित असाधारण साहस को सम्मानित करिथाए। गत 8 तारीख रे राष्ट्रपति प्रतिरक्षा अलंकरण समारोह रे प्रथम पर्यायर साहसिकता पुरस्कार प्रदान करिथिले। केन्द्र समवाय मंत्रणालय पंचम प्रतिष्ठा दिवस उद्घाटन उत्सव भुवनेश्वर स्थित समवाय भवन में अनुष्ठित हो। विभाग मंत्री प्रदीप बलसामंत मुख्य अतिथि भाव जोगदे कहते समवायर समृद्धि अभियान को राज्य में त्वरान्वित करने समवाय विभाग समस्त प्रयास करने सहित अभियान को फलप्रद करने को विभिन्न पदक्षेप ग्रहण कर क्रम राज्यर प्रति पंचायत कृषि ऋण दुग्ध और मत्स्य समवाय समिति गठन होगा प्रक्रिया जारी रही। पैक्स गुड़ी एम पैक्स में परिणत कर विभिन्न व्यावसायिक तथा उत्पादनक्षम कार्य जारी रही मंत्री श्री बलसामंत कहते। महाप्रतापी सम्राट कपिलेन्द्र देवों 591 राज्याभिषेक तथा गजपति दिवस भुवनेश्वरस्थित उत्कल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हो। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सुरज जोगदे कहते ओडिया भाषा को प्रथम कर तत्कालीन राष्ट्रीय तथा प्रशासनिक भाषार मर्यादा गजपति कपिलेन्द्र देव प्रदान करते। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति सुरक्षा तथा सांस्कृतिक नवजागरण पर अवदान अतुलनीय श्री सूरज कहते। सूचना अनुसार 1435 ख्रीष्टाब्द जून 29 तारीख अर्थात आज दिन में महाराजा राज्याभिषेक होता। एथसत गजपति गोड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलबर्गेश्वर उपाधि प्रदान कर। कपिलेन्द्र देव 1435-1465 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करते। आंचलिक संवाद सुनते आकाशवाणी कटक केन्द्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई पक्षर् आज त्रिभाषा नीति संपर्कित मार्गदर्शिका जारी करा जाएगी। ए संपर्क में परिषद पक्षर् जारी विवृत्ति में कहा दशम श्रेणी छात्र छात्री नूतन भाषा नीति लागू होना 2026-27 शिक्षा वर्ष रे पढ़ुथिबा छात्र छात्री माने पुरुना दुई भाषा नीति रे पाठ पढ़िबे। चलित वर्ष सप्तम अष्टम नवम श्रेणी रे पढ़ुथिबा विद्यार्थी माने दुईटी विदेशी भाषा पढ़ुथिबारु गोटिए भारतीय भाषा को तृतीय भाषा भाबे चयन करी सेमाने पढ़ी परिबे बोली सीबीएसई पक्षरु कहा जाइछे। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर् युक्त दुई परीक्षा खाता पुनः जांच आवेदन तारीख वृद्धि करा जाएछि। आसंता काली आवेदन तारीख शेष होता बेले एहाकु आसंता मास 4 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जाएछि बोली परिषद पक्षर् कहा जाएछि। जातीय परिसंख्यन दिवस आज पालन करा जाउछि। जातीय विकास संपर्कित

आकाशवाणी। संबद पढ़ुछंती प्रज्ञा परिमिता जेना। नुआदिल्ली रे द्वितीय प्रतिरक्षा अलंकरण समारोह रे वीरत्व पुरस्कार प्रदान कले राष्ट्रपति। पांच जणंकु अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान। सेसेल्स गस्त फलप्रद सब्यस्त होईछि कहिले प्रधानमंत्री। सीबीएसई जारी कला त्रिभाषा नीति संपर्कित मार्गदर्शिका। स्नानविधि रे गजानन बेशरे श्रद्धालुंकु दर्शन देले श्रीजीव। एवं लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक्स प्रतियोगिता पाई योग्यता हासिल कला भारतीय महिला क्रिकेट दल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नुआदिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवन में द्वितीय प्रतिरक्षा अलंकरण समारोह में वीरत्व पुरस्कार प्रदान करिसेंते। राष्ट्रपति एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वर्षनी, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह भांद्रा एवं लेफ्टिनेंट जनरल महिंदर पल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करिसेंते। आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं अन्यान्य केन्द्रमंत्री और सेनाबाहिनी वरिष्ठ अधिकारी जोगदेले। सशस्त्र बाहिनी, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं अन्यान्य सुरक्षा संस्थार कर्मचारी असाधारण साहसिकता एवं वीरत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वीकृति प्रदान स्वरूप यह पुरस्कार प्रदान करा। जम्मू काश्मीर, उत्तर पूर्वांचल एवं देशर सीमांत अंचल में आतंकवाद, विद्रोह एवं शत्रुपक्ष विरोध में भारत निरंतर संग्राम

0: गुलाबी नानी जुहार
1: जुहार रे गुरुवार उभे जुहार जुहार
0: तोर चास काम केते दूर गोला बोलचे
1: मोर चास काम तो चली छे रे भे एबे डालुआ धान सरेई थिलु आर थरे धान चास करवा लागी तोर भाटो इटा भिडी पड़ीचन
0: हां तो इटा तो धान चास बोल मात्र तोर साग डाल बेर भी तैयार हिचे
1: साग डाल बे तो तैयार हिचे रे भे जाईथिलु कि अमर बाटी
0: होई होई होई
1: हां हां
0: तैयार हिचे बोलनु
1: साग डाल खणे तो करसु ना चासी घरे साग डाल दीरा नहीं करबु बेले किन बाटू नी बने पनीपरिबा दीरा मिलबा तोली आनुचु बेरनुन आर सीधा रंदा बड़ा करुचु केंता मन के भी सरदा लागुचे आर केंता करी सेटा चास हिचे जेरे भे जेंता कि आमे के खत सार व्यवहार करिचु के कीटनाशक दिचु सेटा भी आमे जानी पारुचु किनी आमे अमर हिसाब ने चास करुचु हेंता सतेज पनीपरिबा तोली आनचु आर रांदुचु
0: जा हेले बोलनु ई बाजार नु घिनी आलाटा गुट अलगा है ना
1: होए रे भे
0: अर बेर नु तुली आनी को रानी खायवाटा अलगा
1: होए होए होए देखनु हमर चासी भाई बहन मने भी जार जदी बेर खणे अछे सबे एंता लागी पड़मु पनी परिवार चास करबा लागी बेले अमर मन के भी शांति लागबा अर आमे केंता पनी परिवार खोजु सेटा भी जानी पारमु
0: होई जे नानी तू यार मु कथा हला भितरे बोलनु मके कथा गुटे हेतु पडुची
1: केटा रे भे
0: काटा बोलसी आमर केंद्र सरकार तो खूब गुरा योजना मने भी करी छ
1: होए होए आमर चासी भाई बहन मन कर लागी तो केतनी केते योजना हि
0: जे किसान क्रेडिट कार्ड गुडी भी तैयार कथा है बोलनु
1: होए होए इटा भी मुई सुनी थिली रे भे
0: होई
1: एंता योजना गुटे भी अछे बोली करी
0: होई
1: आगो देखनु आमे पैसार जदि खंच पड़ला बेले जाई करी महाजन ठानन मागी करे आनु थिलु
0: होई
1: मातर को सेतिने केते जे सुद देवा के पड़ु थिला सेतिने काम हैरान ही जो थिलो आराम जित की चास हो थिला बीका भंजा करी कर सब पैसा सेतिने सुजु थिलो मातर को सरकार इंती सुविधा करी चन इटा अमर चासी भाई बहन मन के अभाव सुविधा ने जिना में सब घिना किना करूचू नहीं के चास करवा लगी
0: होए सरकार को सहयोग भी मिलुची
1: होए होए होए
0: हम के चास काम कोला बेले बोलनु जदि किसान क्रेडिट कार्ड करी छु बोले पैसा भी असुविधा नहीं है
1: होए होए होए नहीं है रे भे इथि नहीं अमर एटीएम कार्ड परानी के गोटे कार्ड भी मिलसी
0: होई
1: हेटा भी मैं सुनी थीली बोल तू
0: होई जे इटा गोटे तैयार योजना बोल लो
1: हां अमर चासी भाई बहन मने निश्चय इथिर फायदा उठावे बोल तू
0: होई जे नानी इटा तो तैयार मैं कथा नु बोल
1: होई
0: मातर अमर रेडियो माध्यम ने जिन ददा मने नानी मने अमर कथा सुनुचन से मने भी ई योजना ने शामिल ही करी बने करी फायदा उठावे के बोलचे
1: होए रे भे ई अमर जिन योजना मने होचे अमर सब चासी भाई बहन मन कर लागी आमे सेतिने जदि शामिल हेमु सेतिर जदि लाभ उठामु तेबे जाई करी से योजना सफल हेबा
0: होई तो आमके शामिल हेबाटा सचेतन हेबाटा गुटे बड़ कथा है
1: होई
0: जे नानी तुई तो कथा हेले होति सुना बोलनु एने तने नै ठोंकौ ना
1: केनता हेनता बेलु रे भे मुई ठोंकौ छे ना अमर शिल्पी दो दाता को दल बल के धरी कर आइसचन बोलचु तो
0: ओए तोर मन भी घिचला ना बोल
1: ओए छने कथा वार्ता हेला के
0: होय
1: शिल्पी दो दाबाटे सोर पड़ला
0: हां
1: आस्ते बेले ताकर गाना बजना सुनमु बोली करी
0: हां
1: शिल्पी दादा से जोक के आसले जे शिल्पी दादा ना छने कोई दे
0: शिल्पी दादा अमर प्रताप चंद्र दादा अर्ता कर दल बोल
1: हां हां हां तो हेन ताले ताकर गाना बजना सुनू
0: सुनू

0: सुनली रे भे जेंता सुनरा गाना बजा गजा भी गर्जी गला हिंती करी धन्यवाद गुटे भी दूं
1: दूं तार सुके कॉपी गला बो हां हमें तो बैठक के ले बोलनो हम ज्ञान कौशल और कथा नहीं सुनले हमके खना बनाने लागे
0: होए होए
1: तो हिंती तो विशेषज्ञ आज्ञा जणे आसीचन
0: हमर
1: दोदा गुटे कथावार्ता होची ती आर में बसी करी सुनो
0: चल सुनो
2: आज्ञा जुहार
3: जुहार
2: ई आज हमर दिन कथावार्ताटा अछे आज्ञा ई पनीपरिया फसल रे जीवाणु सार प्रयोग जे जीवाणु सार बोले काना आज्ञा
3: जीवाणु सार आपनकर पनीपरिया चास रे साधारणत व्यवहार कर जायथाय हमर विभिन्न प्रकार पनीपरिया हमर कळाहाणी जे चास करा जाउची सब ऋतु रे आपनकर पनीपरिया अवेलेबल रहउची
2: आज्ञा
3: चासी भाई माने जदि ई सब अनुसार गुड को व्यवहार करिवे ताहेले हमर अधिक अमल पाइ परिवे आ सुफल भाव रे आपन जो कहउचंती सडा गोबर खत किमा कंपोस्ट किमा जैविक सार व्यवहार खूब कम परिमाण में व्यवहार आदौ करना था से भाया द्वारा कौन ना मटीर स्वास्थ्य मानते खराब हो जाए साधारण रासायनिक सार बेस दाम हो जाए जीवाणु सार गुड़ कम दाम मिलूँ जीवाणु सार आप जब कर रासायनिक सार व्यवहार कम करने सहित अल्प खर्च मिलूँ जोद्वारा कि फसल गुणात्मक मान वृद्धि घटता है यही प्रयोग द्वारा मृत्तिकार स्वास्थ्य रक्षा संभव होता है तथा चाषी भाई मैंने जो भाई मैंने अपने शंकर पनीपरिया चाष कर किसमर से रासायनिक सार जीवाणु सार को समन्वित भाग प्रयोग करेंगे तेज़ आम अधिक अमल पाइपर
2: आ
3: जीवाणु सार प्रयोग दुई प्रकार साधारण देखा जाए जो कल्चर पाउडर हिसाब से तरल अवस्था उत्पादन कर तो ये आप पचारे जीवाणु सार गुड़ कौन अच्छा से गुड़ आप उपकारी अणुजीव गुड़ जो मैंने यथाक्रमे आप जबक्ष अर्जन जो नाइट्रोजन को विबंधन कर जीवाणु से फसफ

0: আপনার ঘরটা
1: 1970
2: মাধ্যমে

0: ಅಂದ್ರರು.
1: ಲಗಿತಾ

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में ब्राजील का सामना जापान से, वहीं देर रात जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई किया। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के उप विजेता रहे। FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कांस्य पदक विजेता पुरुष वॉलीबॉल भारतीय टीम को सम्मानित किया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। वहीं कनाडा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार विश्व कप के अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक रिपोर्ट।
1: पहले नॉकआउट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका शुरुआत से ही कनाडा पर हावी नजर आई और लगातार आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए दबाव बनाए रखा। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कुछ अच्छे मूव जरूर देखने को मिले, लेकिन टीम इन्हें गोल में तब्दील नहीं कर सकी।
2: मिक्सचर ऑफ मैन टू मैन एंड जोनल मार्किंग हियर फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन्स। द हेड इज डाउन

0: in. Good follow-up save from Williams. There's a combination of maybe goalkeeper and defender on the line.
1: दूसरी ओर कनाडा को पहले हाफ के अंतिम मिनटों में गोल करने के दो बढ़िया मौके मिले, लेकिन टीम इन मौकों को भुनाने में असफल रही। मोइस बॉम्बिटो के शानदार हेडर को दक्षिण अफ्रीका के डिफेंडर ऑब्रे मोडिबा ने गोल लाइन के पास से क्लियर किया, जबकि ताजोन बुकानन के बेहतरीन शॉट का गोलकीपर रोनविन विलियम्स सफलतापूर्वक बचाव करने में सफल रहे।
0: Defending.
1: पहले हाफ में दोनों टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं हो पाया। दूसरे हाफ में दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले कनाडा की टीम ज्यादा आक्रामक अंदाज में खेलती हुई नजर आई। टीम ने दक्षिण अफ्रीका के गोल पर एक के बाद एक हमले किए। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के मजबूत डिफेंस ने कनाडा की एक नहीं चलने दी। मैच के 75वें मिनट में कनाडा की ओर से स्टार खिलाड़ी अल्फोंजो डेविस मैदान पर आए। डेविस ने मैदान पर आते ही अपनी रफ्तार और बेहतरीन ड्रिब्लिंग के दम पर विपक्षी टीम के डिफेंस पर दबाव बना दिया। रोमांचक मुकाबलों के अंतिम मिनटों में कनाडा के कप्तान स्टीफन यूस्टाक्वियो ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाते हुए निर्णायक विजयी गोल किया। इस जीत के साथ ही कनाडा ने अंतिम सुलह में अपनी जगह पक्की कर ली है।
0: This is dropping nicely. Estequio! Steven Estequio! And it is elimination for Bafana Bafana. But Canada in uncharted waters are sailing into the last 16.
1: कनाडा की जीत के साथ ही इस विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का सफर अब समाप्त हो गया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: अब सीधे रुख कर लेते हैं बैडमिंटन की कोर्ट की ओर। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में एक घंटे से अधिक समय तक चले मुकाबले में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू ली यांग से 15-21, 21-16, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। सुनते हैं फाइनल मुकाबले का हाल।
3: विश्व रैंकिंग में 38वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। सत्र का अपना पहला फाइनल खेल रहे श्रीकांत की गलतियों का फायदा उठाकर यांग ने पहले गेम में अच्छी शुरुआत की और 7-2 की बढ़त बना ली। श्रीकांत ने वापसी करते हुए अगले 11 में से 8 पॉइंट जीते और स्कोर 10-10 से बराबर कर दिया। हालांकि ब्रेक के बाद चीनी ताइपे के शटलर ने वापसी करते हुए 17-12 से बढ़त बना ली। यांग ने इसके बाद 6 गेम पॉइंट हासिल किए। भारतीय खिलाड़ियों ने 1 पॉइंट बचाया, लेकिन फिर शटल को बाहर मार दिया, जिससे यांग ने 17 मिनट में पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में श्रीकांत ने लगातार 3 पॉइंट जीतकर 7-4 की बढ़त बना ली, लेकिन चीनी ताइपे शटलर ने जल्द ही 8-8 से बराबरी कर ली। श्रीकांत ने एक शानदार बैकहैंड क्रॉस कोर्ट नेट शॉट से 10-8 की बढ़त बनाई। उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए उसे 18-13 कर दिया और फिर 7 गेम पॉइंट हासिल कर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। निर्णायक गेम में यांग ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 4-1 की बढ़त हासिल कर ली। श्रीकांत ने इस बीच गलतियां की, जबकि चीनी ताइपे के खिलाड़ी ने अपना आक्रामक खेल जारी रखते हुए बढ़त को 15-7 तक पहुंचा दिया। श्रीकांत के एक और वाइड रिटर्न के बाद यांग ने 12 मैच पॉइंट हासिल किए। भारतीय खिलाड़ियों ने 1 पॉइंट बचाया, लेकिन वो अपना संघर्ष जारी नहीं रख पाए और श्रीकांत के प्रतिद्वंदी ने अपने करियर का पहला BWF विश्व टूर खिताब जीत लिया। मैच के बाद श्रीकांत ने इस मुकाबले का अनुभव साझा किया।
4: I should have maybe played a little better in the opening set. I just feel like whatever I've been doing is working. I just have to keep working hard. Probably I feel like I'm there. It's just about being able to win those crucial points.
3: श्रीकांत ने पिछले वर्ष मलेशिया मास्टर सुपर 500 और सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 में भी दूसरा स्थान हासिल किया था। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
2: उधर बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत का अभियान आज क्वार्टर फाइनल में हांगकांग से 1-2 से मिली हार के साथ समाप्त हो गया। और अब चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। FIH हॉकी प्रो लीग के अपने आखिरी मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। निर्धारित 60 मिनट में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, जिसके बाद मैच का फैसला शूटआउट के जरिए किया गया। संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
5: मैच की शुरुआत इंग्लैंड ने आक्रामक अंदाज में की। पहले ही क्वार्टर में मेजबान टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर मोहित शशि कुमार ने शानदार बचाव करते हुए टीम को शुरुआती झटके से बचा लिया। भारत की ओर

0: से पहले क्वार्टर में सबसे अच्छा मौका अभिषेक को मिला, लेकिन वो भी इसे गोल में तब्दील करने में नाकाम रहे। दूसरे क्वार्टर में जर्मनप्रीत सिंह ने शानदार शॉट लगाते हुए गोल करने का प्रयास किया, लेकिन इंग्लैंड के गोलकीपर ने बचाव करते हुए भारत को बढ़त लेने से रोक दिया। हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने अधिक आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन गोल करने में असफल रही। तीसरे क्वार्टर में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इंग्लैंड के गोलकीपर ने एक बार फिर शानदार बचाव किया। चौथे और अंतिम क्वार्टर में दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा दम लगा दिया, लेकिन कोई भी टीम गोल न कर सकी। इसके बाद मैच का फैसला शूटआउट के जरिए किया गया, जहां भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी। भारत की ओर से अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा और हार्दिक सिंह ने गोल किए, जबकि भारतीय डिफेंस ने शानदार खेल दिखाया। संजय ने डिफेंस में अपने खेल से टीम को जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं मोहित, शशि कुमार और सूरज करकेरा दोनों गोलकीपरों ने अहम मौकों पर बेहतरीन बचाव और टीम को जीत दिलाई। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात वॉलीबॉल पर। पुरुष वॉलीबॉल कप में भारत ने कल ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के साथ भारत FIVB विश्व रैंकिंग में 42वें पायदान पर पहुंच गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम को सम्मानित किया। श्री मांडविया ने कहा कि भारतीय खेल जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत उत्साहजनक है। सरकार ने प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और एथलीट सपोर्ट सिस्टम के लिए जो इंतजाम किए हैं और उनकी योजना बनाई जा रही है, वो हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। कप्तान जेरोम विनित चार्ल्स की अगुवाई और सर्बिया के ड्रैगन मिहाइलोविच की कोचिंग वाली भारतीय टीम ने कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। भारत पुल स्टेज में अजय रहा और कांस्य पदक प्लेऑफ में बहरीन को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार पोडियम में जगह बनाई। और अब बात एथलेटिक्स पर। कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुई 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो स्पर्धा में रोहित यादव ने स्वर्ण पदक जीता। साथ ही रोहित ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है।
2: रोहित इस सीजन में भारत की ओर से सबसे लंबी दूर का थ्रो फेंकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वो श्रीलंका के रमेश अथरंगा पथिरगे के 92.62 मीटर के बाद दुनिया के टॉप थ्रोअर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इस सूची में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में रोहित ने न सिर्फ अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि मीट रिकॉर्ड से भी बेहतर प्रदर्शन किया, जो पहले 84.35 मीटर था। रोहित यादव ने 5 थ्रो किए, लेकिन पांचवा और अंतिम प्रयास सबसे शानदार रहा। उन्होंने 87.05 मीटर का थ्रो कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं लॉन्ग जंप स्पर्धा में केरल के मूली श्री शंकर एम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने चौथे प्रयास में 8.38 मीटर की दूरी तय की। खास बात ये रही कि उनकी सभी वैध छलांगे 8 मीटर से अधिक रही। श्री शंकर ने कहा कि यह मुकाबला काफी प्रतिस्पर्धी था, जिससे उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा मिली।
3: आई फील दैट इज अ मैग्निफिसेंट फीट इंडियन एथलेटिक्स के हिस्ट्री में। वी कैन काइंड ऑफ राइट इट डाउन दैट दिस 2026 ईयर फोर लॉन्ग जंपर्स हैव जंप्ड अबाउट 820 इन दिस वन सीजन। सो दैट शोज द डेप्थ ऑफ लॉन्ग जंप इन इंडिया एंड रियली हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टू दैट पार्ट। आई ऑल्सो हैव अ वाइल्ड स्टैट आई वाज जस्ट काउंटिंग। This was my 60th jump above 8 meters in just competitions, like all together. We hope to continue that moment.
2: इसी प्रतियोगिता के अलग अलग स्पर्धाओं में एथलीटों में शानदार प्रदर्शन कर एशियन गेम्स का टिकट पक्का कर लिया। पुरुष वर्ग में विशाल टीके, मनु टीएस, अभिषेक पाल, बालकिशन, सचिन यादव और श्री शंकर एम शामिल रहे। वहीं महिला वर्ग में प्राची, सीमा, अंकिता और पूजा ने भी क्वालिफाई किया। रुबीना अजीज, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात एशियाई युवा टेबल टेनिस पर। बैंकॉक में आयोजित एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारत की अंडर 19 लड़कों की टीम ने हांगकांग को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ टीम ने कांस्य पदक और अगले वर्ष की विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जगह पक्की कर ली है। अब सेमीफाइनल में भारतीय लड़कों का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन से होगा। हालांकि भारतीय अंडर 19 लड़कियों की टीम क्वार्टर फाइनल में हांगकांग से 1-3 से हारकर पदक राउंड तक नहीं पहुंच पाई। बात क्रिकेट पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने टी

0: 20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। हालांकि पुरुष टीम को सीधे क्वालिफाई करने के लिए इस वर्ष के अंत तक आईसीसी T20 रैंकिंग में एशिया के सर्वोच्च स्थान हासिल करना होगा। और अब बात T20 विश्व कप पर। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर रहते 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। एलिस परी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इस बीच कल बेलफास्ट में ही आयरलैंड ने दूसरे T20 मुकाबले में भारत को 1 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 153 रन ही बना सकी। जय मुंद्रा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। हालांकि भारत का हालिया प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन आज ही के दिन भारत ने 2 वर्ष पहले 2024 में T20 विश्व कप रोहित शर्मा की अगुवाई में जीता था। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद विश्व कप का खिताब अपने नाम किया।
1: एक आखिरी मौका हार्दिक पांड्या, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ। It's in the air, it's India who win the T20 World Cup after 17 years. The drought is over, an ICC tournament after 13, and they become the unbeaten team to hold the trophy. 50th win for Rohit Sharma as captain in T20s, and the first captain to do so.
2: Congratulations to India, led by Rohit Sharma. ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024.
3: Since the time we have come to India, it's been wonderful. The reception we have got here tells you the kind of enthusiasm, the kind of waiting that people had. So this trophy, yes, of course, it means so much to us, but it is for the entire nation. You know,
0: वहीं इस बीच विंबलडन टूर्नामेंट में यानिक सिनर का मुकाबला मियोमिर कैकमनोविच से जारी है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे कल फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
5: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक

0: डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली में

0: मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे पहली जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले चार वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित

0: 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
3: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, over the last 50 years, the relationship between the two nations

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत MSME क्षेत्र है। MSME न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में MSME क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और MSME क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

0: जो हैं ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
1: जी।
0: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
1: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज़्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार, जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए
1: जी।
0: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धन राशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
1: जी।
0: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने
1: दी है।
0: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें देनी थी, और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
1: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE, उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
0: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा, पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10,00,000 रुपए थी। तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं, इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं
1: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको।

0: हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
1: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है, लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा। तो पता करने जाए तो ग्राहक कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
2: जी। आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
0: अच्छा।
2: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपये है और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है तो वो, अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज़ जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है, अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है। ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं, तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
0: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहाँ तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
2: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे GFR के अंदर ये चीज़ निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फ़ायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या MSMEs की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को, उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
0: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।

0: नमस्कार
1: नमस्कार,
0: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखा इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश।
1: जी
0: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है MSME के लिए लोन लेने का, तो कितने परसेंट में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
2: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, RBI की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम रहती है। एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8-10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा।
1: जी, मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार,
3: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान।
1: जी,
3: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू
2: राशिद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये तीन श्रेणियां हैं MSME में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन MSME की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया। और इसका पर्पस ये है कि बहुत से हमारे MSME इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम MSME का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट MSME के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
1: जी हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन जी।
4: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार
4: मैम, मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
2: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूँगा, शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस तरह से?
2: जी मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें,

0: माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 एमएसएमईज हमारे साथ पंजीकृत थे। और ऐसे बहुत से एमएसएमईज थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ। आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ही हम मानते हैं कि एमएसएमईज जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट हैं, और काफ़ी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज़ थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया है कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए 0 स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो एसएमए 1 स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो एसएमए 2 स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता है।
1: और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे, तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफ़ी मजबूत रही है, और उसका एक रीज़न ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है
1: जी,
0: वो भी काफ़ी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो हैं वो क्लीन चलें। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है, जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं, तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: है। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
2: जी मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: और जो एक्सपर्ट साहब हैं, उनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं, तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक, और मिनिमम वेज में कितने निर्धारित करी गई है जी, और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए कुछ, के जो मजदूर काम करते हैं उनके और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती हैं।
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है, तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं, वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है, तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनकी अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग कि एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन

0: नंबर है जहाँ
1: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफ़ी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
0: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
2: जी
0: नमस्कार, सवाल पूछे।
2: जो लघु उद्योग ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं। अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
1: जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफ़ी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं और हमारे एमएसएमईज जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है, तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज़ है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1-800-1806-7-63 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
0: दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी,
3: हेलो
0: जी, हाँ अपना सवाल पूछे।
3: हाँ नमस्ते मैडम
0: जी।
3: हेलो
0: जी, हम सुन पा रहे हैं जल्दी से सवाल।
3: एक्चुअली हमारा ना बुटीक है
0: जी
3: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है?
1: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
0: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
1: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सकें, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाएं बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी, तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ये 2 पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
0: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
1: देखिए उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि

एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है जब आप उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप एमएसएमई में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था। ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी एपीआई बैकिंग है जिसके अंदर हम जीएसटी, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस

0: इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकता है।
1: चाहते चाहते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। 17 लाख लोगों को 15,000 रुपये का टूल किट प्राप्त हो चुका है। 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी
1: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं MSME। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: धन्यवाद प्रियंका।

0: ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರರು ಪಟ್ಟಣರು ಸಾಗರಿಕ ಮಹಾರಣ
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये गीत जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय पर ये समर्पित है, हमारी भारतीय सेनाओं के गौरव और स्तुति ही यह गीत है। यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान।

0: खूबियां हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: भी कैसी भी मुश्किल हर जा...

0: बाजी गले रे ढोल निसंतासा नहीं नची काही जीव दुलकी जीबारे दुल दुल दुल अमे टण नण नण नण टडंग डंग डंग डंग डंग टडंग डंग डंग डंग डंग टडंग डंग डंग नण नण नण हा का जुघला हो काम खटी खटी माने मोला ई एते बड़ फिसकी मुई गुटी बोली पियो ताला खोलू भी मुई आर ताला दो भी मुई आर हेतीर काजे सबकोन आगे भी आसो सबकोन पछे भी जो सेने भी ना सरुचे जे मणि चा मणि पेपर मणि अमका मणि ढिमका ओह ओह इमाने मुके एतकी खटोचन का जे मुके इमन को बेसी दरमा मिला कथा मातर का करबो मोर काम के के देखुची होय हो पियोन चाकरे ने काना अछि जेतकी दरमा दउचन हेती ने का मोर घर चलबा बुद्धिबाट लगे करी उपरी दुई पैसा कमचा बोली चली जाउछ होय हो आलू केजे के पड़े 30 टका प्याज 40 आर पेट्रोल कथा थू थू नाही कोना हार्ट अटैक बोले आयबा तार उपरे ई रमेश ऊपर लोग मन थिसन जे ना निजे खाउचन ना खायबा के दउचन आमर मिश्र आज आड़ बना लोखो ताको ठान जानी कारवा रे ताको सब सेटिंग ना मोर लाई कटिंग रखी दिसिसन हेतिर काजे तो मुई ताको सब काम के हुकुम हाजर करसी आर हम रमेश आज्ञा दीदी रमेश बाबू आज्ञा नमस्कार
1: होनी काना इटा
0: कैट आज्ञा
1: इटा
0: गमला
1: गमला जे तुई काना कलु
0: मुई काना कली किछे नाई
1: मुई नाई देखि बार बार का तुई एबे न पान पूछ किलु
0: सबे ते पूछ किसन आज्ञा आपर खाली मुके रे कोई बार जानी छन ना के
1: आर नै कोई भी तोर काम हो भी सभा करबाटा कि फुरा करबाटा
0: मोर का मुई ठीक करू चन आइया अपन हिंति नै राखो मुई जत की काम करसी आर के भी नै करबा मुई वाली करू छे
1: ओ पूरा छाल छोड़े दू छु आ देखु छु ना केते काम करू छु तुई जे तोर काम तो देख ई गानी जी फोटो के देख के सोफा सुपी ले कर तू ई फुलमा लागे भी देख सुखी कोई खड़खड़ आही गलो तू खूब रिस्पांसिबल रे
0: आज्ञा हेतकी देखले रहबा का ई कथा लागे
1: मोर कथा बेले इटा काना जरूरी नहीं से
0: आपण भी देखु ना या मोर केते काम हे भितरे ई छिटिया मिटिया काम करबार लागी मोर लके
1: समय नै ना तो आर इतार कथा सेतार कथा आर कार न इटा करबार लागी बने समय आछे नै रे
0: आपण तो इंती रागुछन जे इटा महात्मा गांधी फोटो नै से आपण बापा फोटो आए
1: हां आए मोर बापार फोटो खाली मोर बापार फोटो नै से ई देश जाकर सब कर बापार फोटो आर तुई

0: फोटोके सफा कर
1: अफिस जाक काम पड़ी आज्ञा एवे फोटो सफा करमी क्या
2: पाठ साठ पढ़ी सीना जानतु इटा खाली फोटो नहीं सिरे मणि आमर स्वाधीन भारत सीमना एज जेन सुंदर जीवन टे बचुचु इटा सबू तांकर त्याग आउ बलिदान रो फल है
3: हेलो हाँ आज्ञा हाँ हाँ हो आज्ञा आपण चिंता रुहन हाँ हाँ रखुचे आउ मणि कार बारी फल फल्ला हो
2: मर्निंग सर
3: मर्निंग रमेश बाबू मर्निंग कार बारी फल फल्ला आड़े आमर घर के भी गोटे दिवस पठाई देव तो एक्चुअली कथा कण कि आमर मैडम के फल मूल टी सौ तो
1: बारी नुहे आज्ञा आम अफिस् भितर फलीचे त्याग आ बलिदान रल से महात्मा गांधी फोटो ने गचटे जेन फल दुटा देटा खाई आम रमेश आज्ञा पिता ही गलाना
0: तक सफा कर कहली कह बड़ बड़ कथा कण कह जा कपड़ा गोटे आन आर फोटो पुज आर ये फुलमा लगे बदला कड़कड़ा ही गलाना
3: मणि आ चार चुआ नहीं मिले ना के हो
1: मिलवा जे
3: ची फिर गोटे कण
1: ये फोटो पर सफा करवाटा का
3: हाँ हेटा गोटे काम ये तो सब इम्पोर्टाट काम गला तक तो काम धन नहीं मिलला जितु नाइला काम के करूचु
1: मुई का मोर मने मने करूछे रमेश आज्ञा तो कहले बोलिस ना करूछे ना आरी
3: हाँ रमेश बाबू कहले जे हला मुई कहले जे नहीं हला
2: सर से ठीक है सफा करछी ता
1: आज्ञा मुई जिमी के
3: कहली परे जा
2: सर बता के फोटो सफा करवा ले कोथे
3: अपन केनता लोक रमेश बाबू मानविकता बोली कर जिनिस गोट अछे कि ना एड़े बड़ बिच की गुटी के ना पियन ताके अपन नाइला काम मने दोचन जे इटा ठीक के
2: आज्ञा सरकारी ऑफिस जातिर पितार फोटो गोटे लगी धूल दूसर ही गलान माला गोटे भी केवटा सुखी कर खड़खड़ा ही गलान इटा शोभा पाउछे
3: ओहो आगे जो तो चा टिके आनु इटा पछे करूथिबा ना जा रे जा एक्चुअली कथा काना कि चाट नहीं हेले काम नहीं हुए तो
1: आरु फोटो
3: ओहो हटा थू न समय आले करमा ना काईटा फसी जोछे जे नहले पारुछन बोले आपन सभा कर दियन
2: हो मणि कपड़ा उड़ तो दे कर जा छाड़ दिहे लगी भल हेले भी कल्ला तो पिता एक लगवा ना अपना हाथ जगन्नाथ मुई एका सफा कर देसी रुमा फुलमाल गोटे भी लगे देसी फोटो नहीं भल लगवा
1: आज्ञा माला गोटे आनी कर छगन पलि ना
3: हाँ जी सुन
2: आज्ञा
3: मणि के पुड़िया लगे कपड़ा पसरी गली हो देखले कही दबो
1: जदि नहीं भेट पड़े
3: धरी आन बने क्या
2: एक्चुअली कथा खाण कि आज्ञा मुई के बटी के पान पुड़िया नहीं खाए तो सो
3: हेजिटेट करू छन उड़िया है हो मद नहीं से हो ठीक अच्छे कहीं से जो छन
1: कोई जाए आज्ञा ये माला गोटे खराब ही गलना तो नुआ माला गोटे छकुन घिनिक न पलाई से
3: हाँ हाँ हाँ हेटा मन आ रहा
4: आज्ञा जुआ
3: जुआर
4: काम गुटे थिला माफ्रु
3: आरु काम नहीं थिले हेले तम मने इलोका आज तक हो
4: हटा तो सच जे बिना काम ने नहीं सरकारी दफ्तर के क्या जाए मु
3: एंती हेसी ना बवा काम नहीं पड़े लोग आसे नहीं और थोरे काम पड़ला कि निजे लोग आसुथिसन जी आसुथिसन ना हो पूरा मूड खाई देसन जे तमे किए के नर क्या जी आलो नहीं कहलो जी
4: माप्रु मु शुक्र माची आमर घर बहुत टुंगरी आमर घरे मुई आर मोर बुढ़ी दुई लोग ना आमर पिला छुआ के ना
3: बहुत पछताएगी तुम
4: आज्ञा
3: सुनो चाड़े बुआ को
4: माप्रु बड़ा कष्ट झाटी माटी कर करी दुई भोकरा उठे थी मातर हाथी मना मारी ही देले भांगी गोला माप्रु
3: ओहो किड़े बढ़िया ही ची
4: माप्रु
3: अरे तोके नहीं से हो गीत को तक ऊंचे मौजती ची मेरे सपनों के रानी को
4: तो नहीं सुन बार जमुर को था
3: सुनो चे हो बुआ काथी मने मारी दिले तोर हाथी भांगी गला इतकी तो
4: हाथी मार ले माप्रु काथी मना भांगला
3: होए हो हटा ना
4: बिजुक पका घर जोजना ना आम के घर मिल बार को था ना भी आज थीला मातोर एवे पते आम के किचु नहीं मिल बार था माप्रु
3: मिल बा हो मिल बा
4: केबे मिल बा माप्रु आमर पछे जेन मन कर ना लिस्ट ने आज थीला से मने पैसा पाई कर घर बने साल लेना और आमो टाने मिल बारता जी
3: मुई के धोरी कर रखी चे
4: नहीं माप्रु हिंती ने से जे
3: और किंती से जे मिलो कता है मिलबा
1: आज्ञा अच्छा हेते आपन का पुड़िया
3: रमेश बाबू भेट ले
1: नहीं

0: decomba aí, decomba aí, decomba aí, decomba, decomba aí, decomba aí, decomba.
1: Uhum, cara, decutiu.
2: Remune, é tá que lanche mango chun por lagi.
1: Lanche mango bata bol cam que.
2: Bilkul khorap, remune, é tá que jogo por a sushi de be.
1: Sushi não corba da bol cam que.
2: Nai, nai, onya, otiajare.
1: Oi, re. हेत के बिन हटा तो पछरू छे ई लांच शोषण अन्याय अत्याचार इटा मने भल काम के
2: खराब है बिल्कुल खराब
1: कैसे देखुचू आर केते तरह मना करबी खराब कथा नै देखबो बोली
2: जे हेमने हे बुढा के
1: तोर काय गला हे बुढा मन भी थिबा देबा के ती मोजी ने पसीउरी सुकर काजे बोरी हेबु
2: हे बुढा केते गुलगुला होचे आहा
1: फेर देखलु देखने हे बाटे एबे तू ताके देखबु तू ताके देखलियो बोली से बड़ा तोते देखबा कल के कोर्ट कचरी जदी हला कोर्ट तो साखी मांगबा ना
2: मांगबा तो
1: तेन के बड़ा तो न धरबा एन के दौड़ुथिबु एबे जन आ आ करूछु तोके आ करबार किए भी नि बाहरन
2: जे
1: जे कारण तोर माजी पिला छ कथा टिके भाव
2: तो फिर
1: ताकर ताकर जानो होचन होन नि के तू तोर कथा देख तो हटा सब खराब कथा हटा मैं नहीं देखन
2: हां ठीक कोच नहीं देखू हटा सबु दिनिया कथा के कितने तदारत करबी हिंती भी देखले हेले कान करी पार बीचे।

0: देली माफ्रू एबे भी सोर नहीं पेवार के
1: 50,000 केन 50,000 काई थी 50,000 तार मने तुमको काना को बगे चाहूँ चू तुमको लाज दिलू अरु मोर बागी दिलू फिर तो नु लाज नीचे जा जा
0: हिंती नहीं कहूँ माफ्रू हटा मोर जीवन जाकर पूंजी है खूब कष्टे सोची थी सब तुमके धरे देली
1: फिर धरे देली बैला तुम मोके लाज दिलू बोलू चु जे मोके पैसा दिलू बोली किसी प्रमाण अच्छे किसी रसीद कि केन लेखा कागज कि केन साखी
0: से पियो ना गया देखी छन जे माप्रु
1: मणि अरे मणि ई मोते लाज देला पोरे आ तू इथि साखी
2: नाय सर केबे नाय आपन पास सचोट लोग आखे पाके केने भी नहीं ना
0: नीच कथा नहीं कहो बाबू
2: होय रे मोर लागि तो इटा एका छ मोते के पचार ले ओ तो इटा एका कहबी
0: इंती कथा नहीं कहो बुढ़ा बेले काम देवा बोली जहाँ जित की सोची थी सब तुमके दी दिली
1: किसी प्रमाण अच्छे
0: विश्वास न दिली
1: सत पाखे जदि सत बार प्रमाण नहीं ना बिले से सब मीच है
0: हो से घर नहीं ले नहीं मोर पैसा तो फिर दियो आ गया
1: पैसा पैसा पैसा क्या पैसा रे तू लाज दिलू बोलू जे लाज दबाटा गोटे अपराध है दबाटा तो छाड़ो दबाटा चेष्टा कर गोटे अपराध है
2: हाँ सर मुई साक्षी अच्छे बुढ़ा मते आपन संगे सेटिंग करा लाई कहथिला
1: बेले जेल के जीवा एबे को तू हमके पैसा दीथिलु
0: हां
1: दीथिलु बेले जेल के जीवू
0: नहीं
1: रो रो मोई एबे फोन करछ पुलिस के
0: नहीं नहीं नहीं
2: ई बॉयस से जेल के कोले लोग काहे बोलबे बाबा तने बुढ़ी एकला हारी केनता करबा भाव बाबा भाव जेल के गले चक पिसथि पुजे पिसु थिबु ना
0: मोर संगे इति नहीं करो
1: को आके पैसा दी थी लू
0: मैं कहा के पैसा ले थी मैंने कहा के पैसा ले थी इटा इटा और जब करूं जो बात जाती तो मोर हक के मारी कोई तो मैं बोले भी के मैं साथी ले ले
1: मोनी बाहर करो ये बोला कीनू
2: चल बाबा चल इनू
0: सोने ठोक मने खुली मने तमर मने किरा पड़वारे तमर पीला टुगल के बाग ना मारे
2: तुम पड़ बाबा तुम पड़
0: तू भी नरक के जीवू तोर से ऑफिसर भी नरक के जीवा
2: भाग बा बुढ़ा
3: मोने काय करछु बाप बस और बुढ़ा गुटे के एंता व्यवहार देखा संगे
2: ती खोप कोता कोचु रे बुढ़ा
0: तोर बुआ के भी इंती करसु कि रे दार पिला जा तोर बुआ के पोचारबु
3: चुप हो बाबा चुप हो पैन पियो
0: तुम्हें भल लोग पर आदि सुचो बाबू मोर कथा टिके सुनो
3: का रही छे कहो नी क्या

0: काना सुनुचु
1: ई बुबा तांकर संग काना हला हटा कोछु
0: आर तुई सुनुचु ई बुढा हेमान के ई 70 पटिया 18 पटिया मा झी बहन करी हुरुचे जे सेटा काय भल कथा
1: छी छी केते खराब कथा
0: मना करी थिली परे खराब कथा सुनबु नाही
1: जी हे बोबा
0: बोबा बोबा बोबा तोके सरक के नेबा काल के कोर्ट कचरी हेले तोके साखी बोल कर कहबा हेटकी बेले नाही देखी बोली गीता छुई करी ठकी परबु
1: नाही नाही मुई का जिमित कथा कह जेती
0: सत कहबु त बड़ बाबूर विरोधी हबु से हैरान करबा हाय रे जेन माने बाप कालर बुढा के एंता करूछन तते नाही फसाबे बोली काय माने अछि
1: हां त
0: भाप टिके तके जेल ही गले कि तके बयमानी की धोखाधड़ी केस रे फसे देले लोक काय बोलबे
2: एते सचोट देखे हुथला देखो केंताटा जी छी छी
0: सही पारबू तुई जेल पलाले तोर माईजी पिला छुआ
1: हे भगवान
0: केंता से खराब कथा नाही सुन बोले मानसु हे बुढा

0: काना कहिबू
1: माकर माकर मु इमनकर कला काम लोकर सामना ने कहिबी इमनकर विरोध ने कहिबी
0: कहार विरोध ने कहबाटा भल कथा के
1: आरो हेमने जा करछ हटा भल कथा के

చిత్తనంద మళ్ళీ పట్టణ కేంద్రరు.

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार।
1: यह है प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे अपना बिंदु गोलू कुसुंगवाई
0: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
1: तो पहले हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अरोड़ा जी का लिखते हैं
0: उमंग का
1: निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर कौशिक और विमर्श जी की प्रशंसा योग्य लगी। पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवा इस कार्यक्रम की तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं।
0: गुरदीप गुर्जर प्यारी बिटिया मीठी वो लिखते हैं
1: अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। जिनके साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसका इन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है

0: किया गया जिसने का संचार किया। सभी श्रोताओं पसंद आया होगा।
1: जैसे अत्यंत बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
0: जी।
1: शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया कि खूब चर्चा होती रहती है। श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये
0: रहता है प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
1: खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपका धन्यवाद। लिखते हैं
0: सुना बहुत अच्छा लगा। हम जरूर सुनता हूँ। से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
1: हरदीन सुहान अर्जन इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। प्रश्नों के उत्तर जानने की तो हमारा पहला प्रश्न था सूर्य जो हाइड्रोजन हीलियम ये तो फिर सूर्य
0: इसका जैसे ठंडी होती है लेकिन गर्मी पैदा होती है।
1: हम विद्युत की थी
0: इसका जिसके लिए उन्हें ना सम्मान किया गया था
1: उस पर भी
0: इसका गुफा इसलिए सुनाई देती है।
1: और अब हमारा किसने और कैसे की जी जिसे टूथ पैसेज कहते हैं कि
0: श्रृंखला से
1: तो सर के उत्तर आपका प्रश्न है भारत है और इसका प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।

0: साथ ही साथ इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। श्रोता
1: संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया।
1: आई रे आई, आ गया बुधवा। आया लकड़ी?
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा, इतने जामुन लाया हूँ जंगल से, इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का, कल से रोप जाऊंगा बापू।

0: के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। फिकर क्या पेड़ों का? तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
1: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती हैं, काम तो चल जाता है ना।
0: काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
1: अच्छा,
0: कुछ कहना करिया, कुछ आप वक्त के लिए।
1: जब तक जंगल है न लकड़ी की कमी न फल गंध की, बीमार रही गहना बुधनी, ये जो तू जंगली फूल लगा देती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं
0: मैं तुम्हारी बातों से कह देती हूँ हाँ। या
2: नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो हाँ।
1: अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा है, तो ये पाप ही हमारा होता है कि पूरे और पुरखों की भी यही उम्मीद है, मगर तू कल मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
0: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे ठीक।
1: हाँ यही ठीक रहेगा, अरे तू तो बड़ा सर
0: क्या भूल गई?
1: कुछ नहीं,
0: बात होगी हाँ। तुम्हारे साथ आऊंगी पेड़, अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
1: हम काट ला
0: ऐसे ऐसे जानवर, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैं जंगल की ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अच्छा जल्दी सो जाओ।

0: जय, मैं यही हूँ तेरे पास।
1: ए, कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
0: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा, मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़, और अम्मा पेड़ रोने लगा। मुझे दर, मेरी लकड़ी ले लो, पर मुझे मत मारो। मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ, मैंने तुम्हारा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रो, मगर हमने उसे कहा, वो चिल्ला, मैं भी चिल्ला।
0: सोचा सोचा बेटे, सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ। है सोचा बेटे, सोचा सोचा, शाबाश। अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया। इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये?
1: तो फिर कल पी
0: क्यों नहीं? जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: अरे हाँ, वो तो
1: नहीं है, ये नहीं अपना है
0: वो।
1: चल चुप बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
1: अरे अब चुप
0: चुप।

0: चुब्बा, अरे अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी तो चल, चल।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो।

0: गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
1: अरे डर मत, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना इसे
2: अम्मा तू भी चले वापस, तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ अम्मा क्या सोच रहे हैं?
3: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। ये
1: जामुन, चलो इसी को काट।
2: इसे नहीं, ये तो फलों से लदा, हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
3: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी।
1: वो ये तो
3: बात तो तुम्हारी सच है।
2: ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
3: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
1: ये
3: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर, तो
1: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहे इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
3: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
1: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
3: क्यों?
1: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
2: कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
3: हाँ हाँ चलो चलो, चलो। आगे चलकर देखते हैं। चलो
4: ये
3: देखो,
4: ये पेड़
3: देख लो,
2: देखो ओक का पेड़ और वही भी है। चलो अम्मा काटे,
3: चलो इधर से निकल कर आओ।
2: अच्छा
4: ध्यान से बेटा।
3: क्या हुआ?
1: क्या हुआ?
2: अम्मा अम्मा कांटा चुभ गया। अरे
3: दिखा तो
2: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
1: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
2: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
1: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
3: हाँ।
1: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
3: अरे नुकसान भी क्या है?
1: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
3: रहने दो अपनी बातें, कोई और। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
1: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
2: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
3: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना कोई लाभ है उसे।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला।

0: हाँ।
1: वो सब सोचो माँ, अगर हमारा कोई तोड़ दे हमें कैसा लगेगा।
0: हाँ बिल्कुल,
2: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा रहने दे इसको भी।
0: अच्छा।
2: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तो रहने दे इस पेड़ को तो।
0: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
2: मुझे मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
0: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
2: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
0: और क्या।
2: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
0: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
2: जीवा जीवा, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
1: अरे चुप।
0: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
0: लेकिन अम्मा,
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
0: बता?
2: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी।
0: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
2: फिर कैसे?
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
2: चल। बता।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोलना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष चलाने में। समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने ओर संकेत करते हुए पूछा, तुम्हें क्या है? किसी ने कहा,
3: गुरुजी, मुझे राजकुमार और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
4: मुझे पेड़ और चिड़िया।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे चिड़िया की
2: अर्जुन की। द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
5: गुरुजी, मुझे तो चिड़िया।
2: अब बारी बारी से सभी आदेश दिया। ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया कि
6: अर्जुन निशाने

0: saat Abuchan इसलिए उसका निशाना ठीक बैठा और बाण ठीक आंख पर लगा।
1: श्रोता निशाना और अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: था, इसलिए उसका निशाना ठीक बैठा और बाण ठीक आंख पर लगा।
1: श्रोता निशाना, और अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: की टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: Tedy.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ